असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत काल वह संत पापी पाप असंत नूर यार करे सुधाए असंत मलेच माल पाए असंत निंदक करें पा नानक नीच कहें मारे न जा

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी।

रहाओ। सब सुरती मेल सुरत कमाई, सब कीमत मेल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगे आईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया।

भंडारा, जैस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चली है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहेब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वडे आई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को होआ ना को होए,

राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सत पुरखा, बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सत।

नहीं आए। त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जान सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वेडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी।

गुण आख वखाणा। जो सेवा है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह है तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी। तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी। तिन का पौ सब गुआसी जिन सेवया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी। जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करै हर पूजा जी। तप तापै जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शाश्वत जी। कर किरिया खाट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी। जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जेवड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निह चल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी। तू आपे करहै सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ पावै सोई थीसी। जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबने त्याया। जिसनु कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया। तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे। तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल। विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जाना है सोई जान जाने। हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखा है जान है सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ पई ले निवासा। पानी पावक तिन है किया। पंकुज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेतस मूड मना। हर

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दाय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दाय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै कर पारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब बैरन कौ आज संगरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दाय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखण हारे, साहेब संत सहाये प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कारु बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

साध कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निरपकार निरलंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेवना पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीन तनह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी, कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संक्र इकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता, जे अस तुझ तब सरनी परे, पिनके दुष्ट दुखित हवा मरे, पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट नह आय है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तातो काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताकि ताप तनक मोहरे हो, रिद सिद कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा,

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तपाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां।

न गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारी। कह नानक मन मेरी सदा रहो हर नाली। साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा, घर ता तेरा सब किशो है। जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो। जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो हो संतो हो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वासु कीते काल कंटुक मारिया।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाहे तेरै छड जाहे, भौ जल बिखम असगाहो गुर सबदी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो किरपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोय ना जाए जे आवै तू दयाहे। सलोक महला पांजवा अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ। नेत्री सत गुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरतया, दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक किरपा करे, जिसनो ए वाथ दे। जग मह उत्तम काडिए, विरले के महला पांजवा।

जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास राम दसे हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई। जिस डिठे शब्द हो जाए तेग बहादुर सिमरया करनौ नदया वेताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चारी मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्ह नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अणजुट कीता तना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां ना चराए गुरुद्वारां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी केसा स्वस्थ संघ नभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु च त्यावे च तावन का सदका सर्व सकोय जहां जहां खालसा जी। साहिब तह तह रशिया रियायत देखते फतेह ब्रत की पाए पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चुमकियां झंडे मंगे जुगो हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत कारा का आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शियो। हिन माण्यो के माण नितान्यो के तान लोटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावे ता आने रास। महाराज जी आप जी के चरणा च अरदास बेनती आप जी की महान बख्शिश हुई। अमृत वेले तो लैके हुण तक सिख संगतां नूं खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल कीता। शामा दे दीवाना दी आरंभता हुई महाराज जी संगती रूप विच सुखमणी साहिब जी दे जाप हुए ने। उपरंत संध्या वक्त दा समा जाण के सौदा रहिरा साहिब दे जाप हुए। महाराज जीओ समुची सेवा निभाउंदिआं बाणी पढ़दिआं आप जी दी सेवा संभाल करदिआं होईआं बेअंत बेअंत फुलां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बालोदम बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईया संगतां दे हिरदिआं ते वसाउणा आईया संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दीआं तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं धर्म करो नाम दान गुरसिक्खी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जीओ दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशा विदेशां विच रख्या बख्शिश करनी बेअंत संगतां दूर दराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हन जाप सरवण करदे आप जी का धन्यवाद करदे आ बेअंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा सिंघां वास्ते ऑनलाइन भेटा कीती महाराज जी सारी संगत की हाजरी दर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी किरत कमाइया विच बरकता पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनिया जीओ धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्ने सवारिया पूरी होई करामात आप सृजन हारे तारिया धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जीओ अज आप जी का गुरुता गद्दी दिवस सिख गुरद्वारा सहन होजे दियां समूह संगतां वल्लों अमृत वेले तो लैके हुण तक बड़े प्यार श्रद्धा भावना नाल मनाया गया ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਦੇ ਦਰਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰਮਨੀਕ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਸਤਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ $200 ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਦਰਘਰ ਦੇ ਸੇਵ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਪੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ।

वरिता गुणा का हो वै वासुला कड वास लई जै जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जै सांझ करी जै गुण है केरी छोड़ अवगण चली है पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिया।

वाहे गुरु साहिब जी, एक ओंकार सत गुर प्रसाद राग दोख निर्वैर है, राज जोग वर्ते वर्तारा, मनसा वाचा कर्मणा, मर्मणा जापे अपर अपारा, दाता भुगता देनहार, देव सथल सत्संग उदारा, सहज समाध अगाध बोध, सतगुर सच सुवार नहारा, गुर अमर हो गुर रामदास, ज्योति ज्योत जगावन हारा, शबद सुरत गुरसिख होए, अनहद बाणी निचर धारा, तखत बखत प्रगट पहारा, हर की वडियाई हौ आख ना सका, हौ मूर्ख मुगदनी जान, जन नानक को हर बख्श लै मेरे स्वामी,

सगल सामग्री तुमरे सूतर धारी तुमते हो ऐसो तुमरी गत मित नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी, अरदास एक ओवंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक है। गुरु नानक ले त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिह जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु हाजरा हजूर गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी, पंजा प्यारियां चौह साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडित किया तिना प्यारियां सच्यारियां की कमाई का ध्यान करके। बोलो जी, जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल तन चिरवाए गुरुद्वारिया की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां सिखी केसा स्वासा संग निभाई धर्म नहीं हारिया तिना की कमाई का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी, पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया की पवित्र कमाई का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी, प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रैत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी साहे खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी, सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाव दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे भूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल बाले। बोलना जी, सिखा दा मन नीवा मत उची मत पतदा रखा आप अकाल पुरख वाहेगुरु जी हे अकाल पुरख सतगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दता जियो। श्री ननकाणा साहब और गुरुद्वारियां गुरुधामा जिन्हों तो पंथ नू विछोड़िया गया तिना की सेवा संभाल खुले दर्शन दीदार प्यारे पंथ खालसा जी नू बख्शिश करो। निमाणिया दे मां निताणिया दे तां नियोटियां दी ओट गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहब जी महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी शब्द गुरु दाता जी आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सच्चे पातशाह आप जी दे पाणी अंदर चार पहर दिन सुखां दा बतीत होया है महाराज जी अमृत वेले तो इस वेले तक आप जी ने खुले दर्शन दीदार दे के निहाल निहाल निहाल किया है महाराज जी शामा दे दीवाना विच सोदर रहरा साहब शब्द चौंकी आरती कीर्तन गुरमत विचारा अते शब्द कीर्तन किए गए हैं महाराज जी आप जी की हजूरी विच विचरदे हां बेअंत बेअंत भुलां हो जांदियां ने आप जी बख्शण योग हो धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजनहारे तारिया चौथे पातशाह गुरु रामदास साहब जी का गुरता गद्दी पुरब सिख गुरद्वारा सहनो जी महाराज जी सारिया संगतां ने शामा दे दीवाना विच बड़े प्यार सत्कार नाल मनाया हे गुरु रामदास सच्चे पातशाह अपने दर्दियां बख्शिशां रहमतां हमेशा बरकरार रखियो पंथ की एकता बना के रखियो चढ़दी कला बख्शिश करियो महाराज जी गुरु घर दे वजीर साहिबान भाई साहब जी भाई मोहिंदर सिंह जी बाजवा महाराज जी उन्हां दे परिवार की इच्छा है पिछले कई दिनों तो महाराज जी सेहत करके ढिले ने उन्हां नू तंदुरुस्ती बख्शिश करो मुड़ तुहाडे दरबार दियां सेवावां बख्शिश करो झोली विच पाओ संगतां आपो अपने घर बैठे गुरु घर तो लाइव कीर्तन सरवण करदे आ गुरु घर वास्ते बेअंत माया भेटा कर रहीआं हन महाराज जी सच्चे पातशाह दर घर के प्रीतवान मधुर अहुजा समूह परिवार की सेहत तंदुरुस्ती चढ़ती कला लई अरदास बेनती करदे आ गुरु
ਘਰ ਵਾਸਤੇ $1,000 ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰੀਆਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ $25 ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਘੱਟ ਘੱਟ ਏਕੋ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

वो चहे खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी। ख्वार होए सब मिलेंगे खंडा जाके हाथ में कलगी। सो हमरी रचया करे गुर कलगी तर।

0: पुरख विदाते शरदा मन के पूरे नानक दास यह सुख मांग मोकु कर संतन के तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
1: तुदया गए अरदास हमारी जियो पिंड सब कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना न जाने। बोलना जी बोलना जी। अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक ले त्याय फिरंगत गुरदे अमरदास रामदासियां हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करनौ ने दावे ताए सब थाई होना सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होना सहाय दसां पातशाह की जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलना जी। धन धन श्री गुरु नानक देव गोबिंद रूप सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जाके चरण कमला पास अरदास बेटी जोधरी अरजोई आप जहाँ का कोटान कोट शुकर लख लख धनवाद अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जाने अपने पवित्र पावन खुले दर्शन दिदारे बख्श के समूह संगतान निहाल किया है। इस वेले आप जाके हजूर कीर्तन सवेले साहब जी के पाठ हुए सुखासन की सेवा हुई बाणी का पाठ करद सुखासन की सेवा करद अनेक ही प्रकार दुला गलतियां हो गई हो जान बच्चे समझ के बख्श लो अगो वास्ते शुद्ध से स्पष्ट बाणी पढ़न की शुद्ध सेवा करन दी मत बख्शनी। आप जी के भाणे अंदर चार पैर दिन सुख नाल बतीत हो रात्रि आई भाणे अंदर सुख नाल बतीत करवाना अमृत विद्या जागना बख्शना। आप जी के पावन सुखासन साहब तैयार हैं आप जी अपने आसन से विश्राम करो समूह संगतों को छुट्टियां बख्शो अमृत वेले फिर दर्शन दारे बख्शे निहाल करना खरवाद घाट पड़िया पुचुक माफ करना सरबत देर खाद रास करने सही संत प्यारे मिलने जिन्हां मिले तेरा नाम जितावे नानक नाम।

सतगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी। सिमरों सिमर सिमर सुख पावों, कल कलेश तन माहि मिटावों। सिमरों जास विसंबर एक है, नाम जपता गंत अनेक है। वेद प्राण सिमृत सुदाखिर, किन्ने राम नाम एक आखिर। किनका एक जिस जीव सावै, ताकि महिमा गनी न आवै। कांकी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उदारो। सुखमणि सुखमृत प्रवनाम, भगत जिन्ना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभु कै सिमरन दूख जम नसै। प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु कै सिमरन अनदिन जागै। प्रभु कै सिमरन पौ न ब्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभु कै सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन बिन सह दूजा। प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी। प्रभु कै सिमरन होए सुफला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला। से सिमर है जिने आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु कै सिमरन उदरे मुचा। प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहि समाए। प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दर्शन दसना। प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते। प्रभु को सिमरै से जन प्रवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभु को सिमरै से बे महताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे। प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सुधा विनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न चूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी। प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन। प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार। सिमरै से जन जिन को प्रमया, नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई। जय मा प्या दू जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवै तो भारी, हर को नाम किन माए उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोड़ी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनिक माया रंग कितना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जे मार गिर जात केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नामन सदा त्याई, नानक गुरमुख परम गत पाई। छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत है पार पराई। अनक बिघन जय आई सुंगार है,
हर का नाम तत्काल उधारे, अनिक जून जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कबू न तूवे, हर का नाम कूट पाप कूवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई साध कै संग, जी मार के गण जाहि न कुसा, हर का नाम मुहा संतोषा, जी पैटे मंद गुबारा, हर का नाम संगु जी आरा, जा पन तेरा को न सिंजानू, हर का नाम तै नाल पछानू, जय महाप्यान तपत बोकाम, तय हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जा त्रिका मन तुझ आकर कै, तह नानक हर हर अमृत बर कै, भक्त जना की वर्त नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ऊट, हर कै नाम उतरे जनकूट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर खुद साधक मात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन किन्नु दान, मंथन रंग रत्ती रंगी कै, नानक जन कै बिरत बबे कै, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन को आप प्रभु जीना, हर हर जन कै ऊट सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोजन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माती आठ पहर, जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त भव करे, नानक जन संकेत तरे, पार जात्यो हर को नाम, खाम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लत्था, नाम की महिमा संत हृदय, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग विड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को ए श्लोक, बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल, पूज सुनाई हर हरे नानक नाम अमूल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, घट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हो में बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, व्रत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौखंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, माँ उदास पिसर थीवे, अग्न वाहि हुमत प्राण, कनिकस्व है वर भूम दान, न्यवली कर्म करे भुवासन, जैन मार्ग संजम साधन, निमुख निमुख कर शरीर कटावे, तौ पी हो मैं मैल न जावे, हर के नाम संसर कछ नाहि, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाई, मन कामना तीर दे छुट्टे, गर्भ गुमाना मन ते हुट्टे, सोच करे दिन स रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न भिख्या टरे, जल तो वह बहु दे अनीत, शुद्ध का होय काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु ऊच, बहुत सियान बजम का भव व्यापै, अनिक जतन कर त्रिसुन्ना त्रापै, पेख अनेक अग्नि बुझै, कोट पाव दरगै नहीं सिजै, छूट सुनायु पयाल, मुहे व्यापै माया जाल, अवर कर तू सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सुध गावै, जी को अपनी शोभा लोरै, सा संगे हो मैं छोरै, जी को जन्म मरण ते डरै, सा जना की सरणी परै, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, सा समझा का मिटै अभिमान, आपस कौ जो जानै, नीचा सो गणिय सब ते ऊचा, जा का मन हो सगल किरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मने अपने ते बुरा मिटाना, पेख सगल सिर साजना, सुख दुख जन समृष्टिता, नानक पाप पुन लेपा, निर धन को धन तेरो नाओ, निथावे कौ नाओ तेरा थाओ, निमाणे कौ प्रभ तेरो मान, सगल कटाको देवो दान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटाके अंतर जामी, अपनी गत में जानू वापे, अपन संगा प्रभराते,
तुमरी उस्त तुम ते होए नानक वर न जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत माल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस दसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी घट वसै हर नाम शलोक निर्गुण यार एनिया सुप्रभ सदा संभाल जिनकी आत चीत रख नानक निभि नाल अष्टपदी हर मैया के गुण चेत पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासवार सिगारिया घर भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध भर जोवन भोजन सुख सूद बिरद भयाओ पर साख सैन मुख पयाओ बैठ कौ दैन हो निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लिहो तो नानक सीजे जी प्रसाद तारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संघ हसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग सात बसा दिने हस भाव करणे तरसना तिसै त्याग और संग्रचना ऐसे दुख मूढ़ व्यापे नानक काढ लिहो प्रव्यापे आदंत जो रखनहार तिस्यो प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव निध पावै तासु मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर ससदा हजूरे ताको बंदा जान दूरे जाके टहल पावै दर कै मान तिसे बिसारे मुग्द जान सदा सदाय भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्या कौडी संग रचै सा छोट छूट संग मचै जो छिड़न सो अस्त्र कर मानै जो होवन सो दूर पुरानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै तोहे गर्द प्रीत पश्म संग होए अंधकू मैं पस्त विकराल नानक काट लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मान सजात लोक पचारा करै दिन रात बार पेकंतर मलमाया छप सुनाए कुछ करै छपाया बार ज्ञान ध्यान सुनान अंतर व्यापै लोक सुवान अंतर अगन बार तन स्वाहा गल पात्र कैसे तरह था जा के अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सह सुमार सुन आंदा कैसे मार्ग पावे कर गै लिहोड़ निभावे कहा बुझार सबूझे डोरा निष्कहिये तू समझे पूरा कहा विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुर भंग कह पिंगुल पर्वत पर भवन नहीं हो तू हा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरह संग सहाय सुहा वै न चीत जो बैराई ता सुप्रीत बलवा के गृह पीतर बसे अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोक त्रोहया उजुक्त बयाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम तू ठाकुर तुम पैर दास जियो पिंड सब तेरी रास तुम बात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जानै तुमरा अंत उच्चे ते उच्चै भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी तुम ते होए सुआज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागहे आन सुहाए नानक कहु न सीजई बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछ पावै एक बस कारण बिकोट गवावै एक भी न दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कौ कह करे ज्येष्ठा गुरु स्यो ना ही चारा ताकू की जय सद नमस्कार जा कै मन लागा परम मीठा सर्व सुख ताहु मन ऊठा जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व तोक नानक तिन पाया अगंत राव अपनी देरा सुखाद बीत वरतै दुलास अपनी मन कछ बार सावले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बौर उसका विश्वास न होवै जिसकी बस तिसे आज्ञा रखै प्रभु की आज्ञा मन है मत है उसते चौगुण करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हित सर पर होवत जान अनेक फिर की छाया स्यो रंग लावै ओ बिन सह मन पछतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रो तय अंधार बटाऊ स्यो जो लावै नेहि ताको हाथ न आवै केहि मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटम सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजोगन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती सुभस्त्रा मिथ्या रंग संग
माया पी खास्ता मिथ्या त्रोमु अभिमान मिथ्या पुसूपर करत गुमान अस्त्रिपग साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहै मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भए सफल दे नानक हर हर नाम लई बिरथी सागत की यार जा साच बिना कहूत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कै दुर्गंध बिन सिमरन बिन रैन बृथा बिहाई मीघ बिना ज्यो खेती जाए गोबिंद भजन बिन बृथे सब काम ज्यो कृपण के निरार्थ धाम धन धन ते जन जी घट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कछवर कमावत मनी प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर पेख न काहू पीन अवर उपदेशय आप न करै आवत जावत जन्मे मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम पानी तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सुजा ने अपना किया या पहमाने आपह आप आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नीरा पाव से अनुसगल ते रहत सब कर जाने आत्म की रहत जिस पाव है तिसले लड़ लाए तान थनम तरया सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध यार लोभ मोह बिनस जाए अहंग मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाही तिष्ठा कुर कौ रख मन माही जे प्रसाद सुगंधत तन लावै तिसको सिमृत परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नान सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हडावै तिसै त्या कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सुविजय मनाठ पैरता का जस भाविजय जे प्रसाद तु सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जप दरगह मान पावै नानक पत सिद्धि कर जावै जे प्रसाद आरु कंचन देही लिवलावो तिस राम सनेही जे प्रसाद तिरौ लारहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताकै जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूकन पहरी जय मन ति सिमरत क्यों वालस की जय जे प्रसाद अश्वहस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रवे प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत्य सहते आई तिसहते आई जो एक अलखै ना हुआ नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मनाठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेर सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा नूप जे प्रसाद तेर निकी जा सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पिखै बिस्मा जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै ऐसा प्रत्याग और कतलागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार किस प्रभ को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप जे प्रसाद तेरी कार्य पूरे जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू तास्यो राच जे प्रसाद सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहार गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए
सर्व निदान प्रभ तेरी मया, आपू कछु न किन्हू लया, जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इन कह कछु नहात। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साजना की अचर्ज कथाष्टपदी। साधक संग मुखू जल होत, सा संग मल सगली कोत, साधक संग मिटे अभिमान, साधक संग प्रगटे सुज्ञान, साधक संग बुझे प्रभ नेरा, सा संग सब होत नवेरा, साधक संग पाए नाम रतन, साधक संग एक ऊपर जतन, साधकी महिमा बरने कौन पुरानी, नानक साधकी शोभा परमाय समानी, साधक संग अगोचर मिले, साधक संग सदा प्रफुल्ले, साधक संग आवे बस पंचा, सा संग अमृत रस पुंचा, सा संगो सब कीरे, साधक संग मनोहर बैन, साधक संग नकत हुंता आवे, सा संग स्थित मन पावे, साधक संग माया ते पिन, सा संग नानक प्रसु प्रसन्न, सा संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महापुनीत, सा संग किस्यो नहीं बैर, साधक संग ना बीगा पैर, साधक संग नाही को मंदा, सा संग जाने परमानंदा, साधक संग नाही होता, साधक संग तजै सव्याप, अपे जाने साध बडाई, नान साध प्रभु बने आई, साधक संग ना कब हुंता वै, साधक संग सदा सुख पावै, साध संग बसता गो चरल है, साधु कै संग अजल सह, साधक संग बसे तान उच्चे, साधु कै संग महल पहुँचे, साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म, साधक संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साधक संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय कर सेवा, साधक संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साधक संग सब तान गम, नानक साधक संग सफल जनम, साधक संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट दूत निहाल, साधक संग कलुकत हरै, साधक संग नरक पर हरै, साधक संग यहाँ सुहेला, साध संग बिछड़त हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरता जावै, पार ब्रह्म साध रिद वसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साधक संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साधक संग न मंत्र बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साधक संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग कट कर डीठा, साध संग भई आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जानै, जीता सुनै तीता बख्यानै, साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै किस बिन कोय, नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृढ़ समान, जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक, ज्यों वसदा कौ को दै को चंद लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव, नानक ज्यों पाव का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रगासु, जैसे तारु पर आकाशु, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उच्चे उच्चा मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नाथ ब्रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी को प्रयासु, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदा, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार,
ब्रह्म ज्ञानी सदा सुलजागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, श्लोक उर धारै जो अंतर नाम, सर्व में पेखै भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक अपर सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परसो, मन में प्रीत निरंजन दर्शो, पर त्रै रूप न पिखे नेत्र, साध के टैल संग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हरय, मन की वासना मन ते टरै, इंद्री चित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा परस, बैसनो सो जिस उपर सुपर सानो, विष्णु की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो ऐने कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू बल कीचा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग्राचै, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ और नाम जपावै, नानकू वैष्णु परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मनते बिन सह सगला परमु, कर पूजय सगल पार ब्रह्मु, सासुन पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मंथन अर्पै बिशन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुद्धै, राम नामातम मैं शुद्धै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नायावै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सुख मह जानै अस्तूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मह जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सा सुन पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारै, पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाव, काहू जुगत कितै न पाइए धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास जसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै परवानु, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सूची परै, सगल संगत मुदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सो कहावै, तैसा हर्ष तैसा उसोग, सदा नंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा मृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरता ईसाई जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाऊ, जित जित घर राखै तैसा तिन नाऊ, आपे करन करावन जो प्रभावै सोई फुन होग, पसर आप अंत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी माते तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहि निहार, श्लोक उस्तद करै अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रवरचि बहुविध अनेक प्रकार, अष्टपदी
कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमै उदासी, कई कोट वेद की स्रोती, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नव तनाव त्याव है, नानक करते कांत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेगात्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरा, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट पर देश प्रमाहे, जित जित लाव तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पात्र बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी वैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सस्य सूर नखेत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूतार है, नानक तिस पाव है, तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र, कई कोट की रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट की चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जकी नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच, सब ते नीरे सब हुते दूर, दान का बलिप्त रहा परपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव मरे, कई कोट भोजोनी फिर है, कई कोट बैठ ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कहते, कई कोट पै वैरागी, राम नाम संगति लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ्यास, तिनको मिल्यो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होया सु प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट काणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होय अवतार, कई जुग किन्नो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट किन्ने बपात, प्रभ ते हुए प्रमाय समाता, कांत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रकाश, कई कोट तत् के बेती सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पैसा सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, तुमरा सुख समावे, अपने जन को साथ साथ सुमारी, नानक कोई परमेश्वर के प्यारी, सलोक करण कारण प्रभे कह, दूसर ना ही कोये, नानक तिस बलिहार नै जल थल महियल सोय अष्टपदी, करण करावन करने जोग, जो तिस पावै सोई होग, खिन मैं थापु थापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे धार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच विहार, हुक्मे अनिक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक समै रिया समाई, प्रभावै मानुख गत पावै, प्रभावै ता पात्र त्रावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखै, प्रभावै ता हर गुण पाखै, प्रभावै ता पतत उधारै, आप करै अपन बिचारै, दुहां सिरिआं काप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सुकार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहु मानुख ते क्या हुए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसकै हाथ होए तां सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत विख्या मैं रचै, जे जानता अपना बचै, परमे भूला दह तिस धावै, निमक माए चार कुंट फिरे आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक तेजन ना मिले, किन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवास, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दा तिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीस, ताका लिखा न गनै जगदी, जीव पिण सब तिसकी रास, खटखट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही सहाथ, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावै सोई पुंथियो, कब हूँ ऊंच नीच में बसै, कब हूँ सोग हर करंग हसै, कब हूँ निंद छिंद विहार, कब हूँ अकाश पयाल, कब हूँ बेता ब्रह्म विचार, नानका मिला वनहार, कब हूँ नृत करै बपात, कब हूँ सोए रहे दिन रात, कब हूँ माँ क्रोध विकराल, कब हूँ सर्व की हो तरवाल, कब हूँ होए बह बड़ राजा, कब हूँ पेखारी नीच का साजा,
कबहू अपकीरत मैं आवै कबहू भला भला कहावै च्यों प्रवरा कहते वजीर है गुर प्रसाद नानक सच कहे कबहू होए पंडित करे बख्यानु कबहू मोन धारी लावै ध्यान कबहू तट तीरथ स्नान कबहू सिर साधिक मुख्यान कबू कीट हस्त पतंग होए जिया निक जुन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावै जो प्रभावै तिवै नचावै जो तिस्पावै सोई होए नानक दूजा वर न कोय कबू सा संगत उपावै उस स्थान ते बोर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रत एक रंग सदा बसह पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल मैं जल आए कटाना त्यों ज्योति संग ज्यो समाना मिट गए गवन पाए बिसरा नानक प्रभ कै सत कुरबान सलोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार कले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ बले अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत वापस को करमंत कहावै जन मरे बहुजून परमावै तन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकी हां मुक्ता के सुख पावै धनवंता हुए कर कर बावै तिन समान कर संग न जावै बोलस कर मानुकु पर करियास पल पीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाय पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय किस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटै विमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारी श्रम पावे सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नर सुर फिर अवतार अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो पला कहावै तिसे पलाही निकट न आवै सर्व की रेंजा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब जाने मैं किछ करता तब लग गर्व जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नेचर नाही चीत जब लग मोह मगन सगमाई तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक कहो छूटे सहस कटे लग कोट तावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनिक भोग बिख्या के करै न तृप्तावै खप कमरै बिना संतोख नहीं कूरा चै सुपन मनोरथ वृथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करण हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किछ कीनो सु अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझै देखै करे बवेक आपै कापै अनेक मरे न बिनसै आवै न जाए नानक सद ही रहा समाय आप वदिसै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनू आपन विस्तार सब किछ उसका करने हार उसते पिन कहो किछ होए थान तनंतर एक कै सोए अपने चलता करने हार कौत करे रंग आपार मन में अमन अपनी माई नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किन्ने वख्या नी सच सच सत सब कीना कोट मते किन्ने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर सो जन उदरन हारु संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै संत कै दुखन जमती नहीं छुट्टै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सो बाते हीन संत के हथे को रखे न कोई संत कै दुखन थान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जी करे नानक संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जून लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में चले संत कै दुखन सब कुछ छलै
संत कै दुखंती सब जाए, संत कै दुख नीच निचाए, संत दुखी का था को नाही, नानक संत पावै ताए भीगत पाई, संत का नंदक महा अत ताई, संत का नंदक टिक न पाई, संत का निंदक महत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत के निंदा दुख में दुख, नानक संत पावै ता उसका पी हुए मुख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को डान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी मा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म में मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाऊ, नान संत भावे ता ले मिलाई, संत का दुखी अद विष ते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर के थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के

उठया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है। संत के दुखी की पूजे न आता, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत के दुख न तृष्ट कोई, जैसा भाव है तैसा कोई हुई। पया किरत न मिट कोई, नानक जाने सच्चा सोई। सब कर तिसको करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। रब की उस्तत करो दिन रात, सहते आहू सास की रात। सब कछ वरत तिसका किया, जैसा करे तैसा कुथिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़ भागी, नानक जन से श्लोक। तजो सियानक सुरजन हो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाय। अष्टपदी मानुकी टेक वृति सुभजान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रह अघाई, बहुर न तृष्णा लाग गए आई। मारे रखे को आप, मानु कह किछ नाही हाथ। तिसका हुक्म सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिगन न लागे कोए। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसनामृत पियो, सदा सोहेला कर लह जियो। नैनो पेखा कुरकार अंग, साध संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जपिय हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मत्था। बड़भागी तेजन जग माही, सदा सुधार के गुण गाही। राम नाम जो करे विचार, उसे तनवंत गणी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जन होते सुखी। एको एक एक पछाने, तुत की उसो जी जान। नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्हें निरंजन जानिया। गुरु प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझे। साध संग हर हर जस कहे, तो सर्व रोग त्यो हर जन रह। तो अंदर कीर्तन केवल बुख्यान, गृष्ट में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन, एक ऊपर जिस जन की आसा। तिसकी कटिया जम की पासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख। नानक तिसन लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवे। सो संत सुहेला नहीं दुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे। सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्ट आया। अपने कार्य में आप समाया, सो दत्त सो दत्त सो दत्त सीजया। गुरु प्रसाद तत् सबूजया, जब देखो तब सब किछ मूल। नानक सो सुखम सोई असूल, न किछ जन्मे न किछ मरे। अपन चलता आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट। आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सकल में आप। अनिक छूत रचताप उथाप, अविनाशी नाही किछ कांड। धारण धारे हो ब्रह्मांड, अलख अपे पुरख प्रताप। आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत। सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण। प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेल लय कृपाल। गुरु का शब्द जप पहि निहाल, उनकी सेवा सोई लागे। जिसनु कृपा करह बड़ पागे, नाम जपत पावे विश्राम। नानक तिन पुरखोत्तम करमान, जो किछ करे सो प्रभ कै रंग। सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाए हुआ सो हुए। करने हर पछाने सोए, प्रभ का किया जल मीठ लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माए समाए। कोई सुख निदान उन्हु बने आए, आपस को आप दिनु मान। नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ, व्यर्था जानन हार। जाके सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गार्डन हार गोपाल, सर्व जी आया पे प्रतिपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरता कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जा, अविनाशी प्रभ आपे आप। अपन किया कछु ना हुए, जे सो प्राणी लोचै कोए। तिस बिन नाही तेरै किछ काम, गत नानक जपे हर नाम। रूपवंत हुए नाही मोह है, प्रभ की जो सगल कट सो है। धनवंता हुए क्या को गर्व है, जा सब किस तिसका दिया धर्व है। अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहता वै। जे को हुए वह दाता।

पद प्राचित गए। मंत्रने अंतरिक प्रभु राता गुर प्रसाद नानक इक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया प्रयातौ शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाय अष्टपदी चाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरे श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो साध साध प्रभ तुम्हें त्यागो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करूं प्रभ की नित नीत एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभ की दृष्ट महासुख हुए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन त्रिपतानी पूरन पुरख नहीं डोलानी सुपार परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवला बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए शिव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल शिव कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी श्रद्धा सपूरी रव रहया सत्संग हजूरी जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न भानै सो क्यों बिसरै जे की आ जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काटै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है गुरपुरै तत है।

0: शास्त्री आप कथा आप सुनने हार
1: आपे एक आप विस्तार
0: ज्ञात स्वभावे ता श्रेष्ठ उपाय
1: अपने पाने लए समाये
0: तुमते पिन नहीं किछ होए
1: आपन सूत सब जगत परोए
0: जाको प्रभु जी आप

0: दुख,
1: चिंता जाय मिटे अंकार,
0: जिस जन को कोई न पोचन हार,
1: ऊपर ठाडा गुरसूरा,
0: नानक ताके कार्ज पूरा,
1: मत पूरी अमृत।

0: मानव इंद्र गजेंद्र नराधव ज्यों त्रिलोको राज करेंगे।
1: कोटि स्नान गजादक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे।
0: ब्रह्मेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे।

0: पत प्रवाणा पिछे पाई ता नानक तोलिया जापे महला पहला।
1: पति सुभ जगनान का सच्चा विखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो होए अगे जा आत ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लिखे पद

कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया रहाव। जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहिया। तू सच्चा साहिब सिफत सवाले।

0: जारी देख सुदय जाहे महला पहला।
1: पढ़ पुस्तक संध्या बाद अंग सिल पूजस बगल समाध अंग मुख चूट विपूकण सारंग त्रैपाल त्याल विचारंग गलमाला तिलक लला टंग दुई धोती वस्त्र पाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सपू करने चो कर्मं को नानक ने चो त्यावै विण सतगुर वाट न पावै।

सुख सोहे लड़ा हर त्यावहु गुरमुख हर फल पावहु गुरमुख फल पावहु हर त्यावहु जन्म जन्म के दुख निवारे सुख सोहलड़ा हर त्यावहु गुरमुख हर फल पावहु

अनिक ब्रह्मे जाके वेद धुन करहे, अनिक महेश बैस ध्यान धरहे, अनिक पुरख

पूरन मन मोहन घट घट सोहन जब खिंचे तब छाई क्यों न अराध हूं मिलकर साध हूं।

शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं ता एक शब्दं जे को जान सपेयो, नानक ताको दास है सोई निरंजन देओ, एक कृष्णं ता सर्व देवा देव देवा ता आत्म है, आत्मं श्री वास देवस्य जे कोई जान सपीव, नानक ताको दास है सोई निरंजन देव। सलोक सहस्कृति महल।

कथंचि माता कथंच पिता कथंच बनिता विनोद सुत है कथंच प्रातमीत हित बंधव कथंच मोह कुटुंब्यते कथंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोत रहंत संग भगवान सिमरण नानक लभ्यं अच्युत तनय त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधव है त्रिग स्नेहं बनता विलास त्रिग स्नेहं बनता विलास सुत है त्रिग स्नेहं गृहात कह साध संग स्नेहे सत्यं सुख्यं बसंत नानक है मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं वर्धंत जरुआ हत्यंत माया अत्यंत आशा अतिथ्य पवन गणंत स्वासा पयांतरम पतंत मोह कूप दुर्लभ है देहं तत् आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटंग रचंत तोयं लेपनं रक्त चरमण है नमन द्वारं पीत रहतं बायरूपं अस्थमन है गोविंद नाम नह सिमरंत अज्ञानी जानंत आस्थिरं दुर्लभ दे उदरंत सात शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत तोयं अच्युत गुणज्ञं पूर्णं बहुलो कृपाला गंभीरं ऊचे सर्वज्ञ अपारा।

पेखंतबधिक प्राहय प्राह परहारेण लख्य आवधय अहो जस्य रखेन गोपोल गोपाल है नानक रोम न छेद्यते। बहु जतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर्दिशय विखम थान बसंत ऊच नह सिमरंत मरण कदांच है। हुवंत आज्ञा भगवान पुरख नानक कीटी सास्या कर खते। शब्दं रतं हितं मया कीर्तं कली कर्म कृत्वा मिटं तत्रागत परमोहं भगवान रमणं सर्वत्र स्थान्यं दृष्टयं अमोघ दर्शनं बसंत साध मिटं बसंत साध रसनां हर हर हर हरे नानक प्रियं जाप जपना। कटंत रूपं कटं दीपं कटंत रावसस्यर नख्यंत्र गगनं कटंत बसदागिर तारक शिखंडं कटंत ललना सुत प्राथीतं कटंत कनक माया मानिक माया स्वरूपं नह कटंत केवल गोपाल अच्युत। आसिरंग नानक साध जान नह बिलंब धर्मं बिलंग पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सन संतं किल विखनासं प्राप्तं धर्म लक्षण नानक जेह सुप्रसन्न।

जौबन वह क्रम कनिक कुंडल है, बचित्र मंदर सोभंत बस्त्रा इत्यंत माया व्यापतिं। हे अच्युत शरण संत नानक सो भगवान नमः। जन्मंत मरणं हरखं तसोगं भोगं तारोगं ऊचं तनीचं नाना सुमूचं राजं तमानं अभिमानं तहीनं परवृत मार्गं वर्तन्त विनाशनं गोविंद भजन साध संगेन आस्थिरं नानक भगवंत भजनासनं। कृपंत हरियं मत तत् ज्ञानं बगसीद्य बसुदा कुशलथानं बस्यन्त बस्यन्तरिक्षं त्यागमानं शीतलंत्रिद्यं दृढ़ संत ज्ञानं रहंत जन्मं हरदर्शलीना भजंत नानक शब्द बीणा कहंत वेदा गुण।

नह चिंता मात पित भराता है, नह चिंता कछ लोक कहे, नह चिंता बनसा सुत मीत है, पर व्यर्थ माया सन बंधन है। दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जीव प्रतपाल कहे। अनित्य वितंग अनित्य चितंग अनित्य आशा भव भेद प्रकारंग, अनित्य हितंग अहं बंधं क्रम माया मलन मलनंग विकारंग। फिर अंत जोन अनेक जठरागन नह से मनंत मलीन बुद्धिं, हे गोविंद कर्त मया नानक पतत उदाहरण साध संगम है। गिरंत गिर पाता पतित पातालं, जलंत दे द्वी दे दीप्य बै स्वांत्र है, बहंत अगाह तोयं तरंगं, दुख्यंत ग्रह चिंता जन्मं का मरण है। अनेक साधन न सिद्ध्यते नानक स्तंभं अस्तंभं अस्तंभं शब्द साध स्वचन है। कोर दुख्यंग नेक हत्यंग, जन्म दारिद्र महाविख्यादंग, मिटंत सगल सिमरंत हर नाम, नानक जैसे पावक काष्ठ पस्मं करोत। अंधकार सिमरत प्रकाशं, गुण रमंत यज्ञ खंडन है, हृद बसंत पय पीत दूत है, कर्म करंत महानिर्मल है, जन्म मरण रहंत श्रोता, सुख समूह अमोघ दर्शन है। शरण योगं संत प्रे नानक, सो भगवान खेमं करोत। पाछं करोत अग्रणी वह, निरासं आस पूर्ण है, निर्तन भयं तनवंत है, रोगियं रोग खंडन है,

अधरंतरं कारणय निर्धनं तान नाम नरहर अनाथ नाथ गोविंद बालहीन बल केशव सरभूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ पूर्ण पुरख भगवान है भगत वचल करुणामय काट काट बसंत वासुदेव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जाचंत नान कृपाल प्रसाद नह विसरंत नह विसरंत नारायण है न समर्थं न सेवकं न प्रीत पुरख पुरखोत्तमं तव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं पर्ण पोखण करंत जिया विश्राम चादन देवंत दानं श्रीजंत रतन जन्म चतुर चेतन है वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरे अनित्य रचना निर्मोहते।

गोविंद है, जस्य सिमरण हृदंतर है, आरोग्यं महारोग्यं विसिमृते करुणामय। रमणं केवलं कीर्तनं सुधर्मं देह कारण है, अमृत नाम नारायण नानक पीवतं संतना तृप्यते। सहनशील संतं सामित्रस्य दुर्जन है, नानक भोजन।

तस्यं करोत पंच तस्कर मृग तृष्णा गंधर्म नगरं द्रम छाया रच दुर मत है तत है कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है। नच विद्या निधान निगम नच गुण अज्ञ नाम कीर्तन है नच राग रतन कठन है चंचल चतुर चातुर है। भाग उदम लब्ध्यंग माया नानक साध संग खल पंडित है कंठ रमणीय राम राम माला हस ऊच प्रेम धारणी जीह पाण जो उत्तम श्लोक उदृढ़ नयन नंदनी। गुरमंत्र हीन से जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन है कुकर है सुकर है गर्दभ है काक है सर्पन है तुल खल है चरणार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारण है तीर्थनंग सा संगे नानक नह दृष्टंत जमदूतन है। नाच दुर्लभंग तनंग रूपंग नाच दुर्लभंग स्वर्ग राजन है नाच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नाच दुर्लभंग स्वच्छ अंबर है नाच दुर्लभंग सुत मित्र पाक प्रात बांधव नाच दुर्लभंग बनिता बेलास है नाच दुर्लभंग विद्या परवीण नाच दुर्लभंग चतुर चंचल है दुर्लभंग एक भगवान है दुर्लभंग एक भगवान नाम है नानक लब्ध्यंग साध संग कृपा प्रभंग। जात कत है तत है दृष्टंग स्वर्ग मर्त प्रायाल लोक है सर्वत रमणंग गोविंद है नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतंग दृष्टा सखा सुवचन है दुखंग पयंत सुख्यं पय पीतंग ता निर्पय थान विहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममंग शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्वकर्ता ममंग कर्ता नानक लेप शेप ना लिप्यते न शीतलंग चंद्र देव है न शीतलंग पावन चंदन है न शीतलंग शीत रुतेण नानक शीतलंग साध स्वजन है मंत्रंग राम नाम मंत्रंग राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है दयालं सर्वत्र जिया पंच दोग विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहता है उपदेशं सामित्र सत्र है भगवंत भगत पामनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं आप ते आग सगल रेणु कहे खट लख्यन पूर्ण पुरख है नानक नाम साध स्वजन है अजापोगंत कांद मूलं बसंते समीप के हर है तत्र गते संसार है नानक सोघर कंगते चलं छिद्रं कोट विघ्नं अपराधं किल बिखमलं परम मोहं मान अपमानं मदंग माया व्यापतं मित्र मित्र है जन्म जमंत मित्रं जन्म परमंत नरक अनेक पावं न सिद्ध्यते निर्मलं सासंग है जपंत नान गोपाल नामं रमंत गुण गोविंद नित प्रत है तरण शरण स्वामी रमणशील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रभ पूर्ण है निराशयास करनं सगल अर्थ आलय है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचिक है दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्व सुखण दुर्वचन पीर परमं साकत पिसनं सुरजन है आस्थितं सोग हरखं पय खीणं ता निर्भव है पय अटवीयं महानगर वासं धर्म लक्षण।

रामंग बहुजोनी परमावन है। चित चरणं त्रैलोक गम्यं जाप तप शील विदारण है। अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावन है। पाव पय विमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण है। हे कल मूल क्रोध कदंच करुणा नायक ऊपर जते विख्यंत जीवं वश्यं क्रोध नित्यं क्रोध जथा मरकट है। अनेक शासन ताड़ंत जम दूत है तब संगे अदमंग नर है। दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रख्या करोत। हे लो बालम पट संग सिर मोरा अनेक लहरी कलोलते तावंत जी आ बहु प्रकार अनेक पांत बहु डोलते। नच मित्रंग नच इष्टंग नच बादव नच मात पिता तब लज्जिया अकर्णं करोत अखाते खाद्यं असाज्यं साज समझ्या। त्राहि त्राहि शरण स्वामी विज्ञा विज्ञाप्त नानक हर नर हर है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अनक अनेक माया विस्तीर्ण है। आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहुगुण है। प्रम्प्यान उद्यान रमणंग महाबिकट असाध रोगण है। वैद्यंग पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक

सवस खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधव है। चरण कमलं चरण कमल शरणंग रमणंग गोपाल कीर्तनय सासंगीन तरणंग नानक महासागर पै दुतर है। सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मं हस्त काया रख्या परमेश्वर है। आत्म रख्या गोपाल स्वामी तन चरण रख्या जगदीश्वर है। सर्व रख्या गुरदयालय पै दुख विनाशन है। भगत वचल अनाथ नाथे शरण पुरख शरण नानक पुरख अछुत है। जीन कला धार्यो आकाशं वैसंत्रं काष्ठभीष्टं जीन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतिं सासं शरीर धारणं जीन कला मात गर्भ प्रतिपालं नय छेदंत जठर रोगण है। तीन कला स्तंभं सरोवरं नानक नय छिजंत तरंग तोयण है। गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरण सर्वत्र जीवन है। लब्ध्यं संसंगेन नानक स्वच्छ मार्ग हर भक्तन है। मस्तं पगनंत सैलं करदं तरंत पपील कहे सागरं लघंत पिंगं तं प्रगास अंध कहे साध

बिंदय बसंत साधृद्यंग अचुत बुझंत नानक बड़ भागी है। उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी स्वान स्याल खर है। विखम स्थान मन मोह मदरंग महाया साध पंच तस्कर है। हित मोह पय परम परमणंग अहं फांस तीक्षण कठिन है। पावक तो असाध कोरंग अगम नीर नहलंगन है। पाज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा। कृपा कृंत गोविंद गोपाल है सगलंग रोग खंडन है। साध संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है। श्यामलंग मधुर मानुख्यंग हृदयंग पूम वैरण है। निवंत हो वंत मिथ्या चेतन संत स्वजन है। अचेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते। छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासते। रचंत पुरख है कुटंब लीला नित आसा बिख्या विनोद। परमंत परमंत बहुचन महार्यो शरण नानक करुणामय है। हे जेहबे हे रसगे मधुर प्रिय तुयं सतहतं परम बादं अवरत एथ सुध अचरण है। गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतं बलवंत बलात् कारण है। चरण कमल नह पजंत तृण समान त्रिग जन मन है।

तमेरं सहकं तहरियं बूडं तंतरियं ऊनं तपरियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं। ब्राह्मण है संग उतर

विघ्न करणं कूचरणं सर्व जी कहे लो लई तृष्णा अत पात मन माए कर्म कर्त से सुख रे मतेश्वर चरणं उदृणं पै दुतर है अनेक पात एक हरणं नानक साध संगम ना संसार नानक साध संगम ना संशय है। महला पंजवा गाथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोहक सुगंधा परस मानुख्य देहं मलिनं मजा रुदर दुर्गंधा नानक हाथ गर्वेण अज्ञानो परमाणु पर्यंत आकाश है दीप लो शिखंडन है गछीण नयन पारीण नानक बिना साधु ना सिद्ध्यते जानो सत होवंतो मरणो दृष्टेण मिथ्या कीर्त साथ चलंथो पणंत नानक।

मैला घर संगीण निम बिरख से चंदन है निकट बसंतो बांसो नानक बुद्ध ना बोहते। गाथा गुंफ गोपाल कंथ कथंग मथंग मान मर्दन है हतंग पंच सत्रेण नानक हर बाणे पर हरण है। बचन साध सुख पंथा लहन था बड कर्मण है रहन था जन्म मरणे न रमण नानक हर कीर्तन है। पत्र पुरजे

संसार काम तजनंग नानक गोविंद रमणंग साध संगम है सुमंत्र साध बचना कोट लोख विनाशन है हर चरण कमल ध्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जीण मध्य हर कीर्तन है मुक्ते रमण गोविंद है नानक लब ध्यंग बड़ भागण है हर लब दो मित्र

आप जसंग मिटंत सत पुत्र है, सिमरताभ्य हृदय गुर मंत्रण है, प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण है, मरणं विश्रण गोविंद है, जीवनं हर नाम त्यावण है, लबणं साध संगे नानक हर पूर्व लिखण है, दसन बिहून कोयंगम मंत्र गारुड़ी निवारं व्याध उपाड़न संतं नानक लबद कर्मण है, जाथ काथ रमणं शरणं सर्वत्र जियण है, तथ लंगणं प्रेम नानं प्रसादं गुरदर्शन है, चरणारविंद मन विद्यं सिद्ध्यं चरणारविंद मन विद्यं सिद्ध्यं सर्व कुशलण है, गाथा गावंत नानक पव्यं परापूर्वण है, शुभ बचन रमणं गावणं शुभ बचन रमणं गमणं साध संगेन उदरण है, संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते, वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उद्धारं।

नानक वड भागी भेट अंत दर्शन है। सर्व दोख परंत्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतण है। लबधेन साध संगेण नानक मस्त लिखे नानक मस्तक लिखण है। होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सतम जानो नानक प्रीत कारण। सुखेण बैण रत्नंग रचनंग कसुम्बरंगण रोग शोक वियोग नानक सुख न सुपन है। फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कला में अगाम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब रंग उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। उसत कह न जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा में बैस की कीर्त में कहा अर्पी सब सिगार एहो एहो जियो सब दिवा। आस प्यासी से सुकंत विशाई है हर हम सक हो वह भाग साजन पाई है। सखी का जल हार तंबोर सब किच साजिया सोलह किए सिगार की अंजन पाजिया। जे घर आवे कंत त सब किच पाई है हर हां कंत बाज सिगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वस्या कंत सावड भागने तिस बनिया हब सिगार साई सोहागने। हो सुती होए अचिंत मन आस पुराईया हर हां जा घर आया कंत सब के छुपाइया। आसा इति आस की आस पुराई है सतगुर पै दयाल ता पूरा पाई है। मैं तने अवगुण बहुत की अवगुण छाया हर हां सतगुर पै दयाल ता मन ठहराया। कहो नानक बे अंत त्याया गुतरे हो संसार सतगुरु उतराया। मिटाया वा गौण जा पूरा पाया हर हाँ अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया। मेरे हाथ पद्म आगन सुख बासना सखी मोरे कंठ रतन पेख दुख नासना। बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हाँ रिद सिद्ध नव निद बसै जिस सदा कर। पार्ते रावण जाहे सही तां लाजियै नित प्रत हिराय पर दर्भ छिदर कत ढाकी है। हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म बिचारई। ऊपर बनय आकाश तलै धर सोहती दह दस चमकै बीजल मुख को जोहती। खोजत फिरो विदेश पियो कत पाई है हर हां जे मसक हो वह भाग तंदरस समाई है। डिठे सभ्य थाव नहीं तुद जिहा बद्धो पुरख विधाते विधाता तां तू सोहया। वस दि सगन अपार अनूप रामदासपुर हर हां नानक कसमन कसमल जाहे नाय रामदास सार। चात्रिक चित सुचित सुचा साजन चाहिए जिस संग लागे प्राण तिसै को आही है। बन बन फिरत उदास बूंद जल कारणे हर हां त्यों सग हर हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहारणे। मित का चेत अनूप मरम न जानिए गाहक गुनी अपार सुता तपशानिए। चित है चित समाए हो वै रंग कना हर हां चंचल चूरै मार तपावै सच तना। सुपने उबी पई गहो की नायंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला। खोजो ताके चरण कहो कत पाई है हर हां सोई जतन बताए सखी प्रियो पाई है। नैन देखन साध सी नैन बिहालिया करन सुन है नाद करन मुंद कालिया। रसना जपै न नाम तिल तिल कर कटी है हर हां जब बिसरै गोबिंद राय दिनों दिन कटी है। पंकज फाथे पंक महामद गुंफिया
अंग संग उर जाए बिसरते सुंफिया है।

पंच सताव दूत कमन बेद मारने तीखण बाण चलाए नाम प्रभ त्याई है हर हा महा बिखादी घात पूर्ण गुर पाई है सतगुर की नींदात मूल न निखुटई खावो पुंचो सब गुरु मुख छुट्टई अमृत नाम निदान दिता तो सहार नानक सदाया राध कदे ना जाहे मार जिथे जाए भगत सुथान सुहावना सगले होए सुख हर नाम त्यावना जे करन जयकार निंदक पुए पच निंदक करन जयकार निंदक मुए पच साजन मन आनंद नानक नाम जप पामन पतत पुनीत कतह नहीं सेविय झूठे रंग खुआर कहां लग खेविय हर चंदौरी पीख काहे सुख मानिया हर हां हों बलिहारी तिन जिधर गए जानिया तीने कर्म अनेक गुआर बिकार कान महादुर्गंधत वास साठ का चार तन फिर तो गर्भ गुबार मन मरण न जानई हर हां हर चंदौरी पीख काहे सच मानई जिसकी पूजा औद तिसै कौन राखई वैदक अनेक उपाव कहां लो पाखई एको चेत गवार।

मिल मिल खावे संत सगल कौ दी जई, जिसे प्राप्त होए तिसे ही पामणे, हर हां हो बलिहारी तिन जिहर रंग रामणे। वैदा संदा संग इकट्ठा होया, औख दे आए रास विच आप खलोया, जो जो ना कर्म सुकर्म होए पसरिया, हर हां दुख रोग सब पाप तन ते खिसरिया। चौ बोले महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सम्मन जो इस प्रेम की, दम क्यों होती साट, रावण होते सौ रंक रंक ने, जन सिर दीने काट। सम्मन जो इस प्रेम की, दम क्यों होती साट, रावण होते सौ रंक ने, जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रया, बीच न राई होत, चरण कमल मन भेद्यो, भूजन सुरत संजोग। सागर मेरे उद्यान बन, नाव खंड बसुदा परम, मूसन प्रेम प्रेम फिरम कै गण।

जप तप संयम हरक सुख मान महत अर गर्व मूसन निमखक प्रेम पर वार वार द्यो सर्व। मूसन मर्म न जानई मर्त हिरत संसार प्रेम पिराम न बेदियो उर्ज्यो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिछरत प्रेम बिहाल मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जाको प्रेम सुआव है चरण चरण चितव मन माहे नानक बिरहे ब्रह्म के आन न कत हो जाहे। लाख काटी ऊं चौकनो चंचल चीत बिहाल नीच कीच निमरत कनी करनी कमल जमाल। कमल नयन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार मूसन मगन मरम स्यो खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यो सूद न सिमरत अंग प्रगट पयो सब लो मह नानक।

प्रगट भयो सब लो मह नानक अदम पतंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सोहन पंच प्रवान नगरी कर्म प्रवे कथ खाई बुद्ध पाए नानक दया कर्म खंड का एवो ज्ञान खंड का किते पौन पानी वह संतर किते

निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक उसी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़े आर करे सुराए अशांत मलेच मार पाखाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कहे जा मारे न जामा पे जो सुख पावे सही परिकार सदा सुनाम संत नाम संत नाम गाँव नाम संत लो असंत कहें सिर्फ।

निर्भौ निर्वय अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य

संत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत पूरे आर करे फिराए संत मलेश मल पाए असंत निंदक करे पा नानक नीच कह क्या हर अनजान के जो तुझ पावे सही सही कर सुना सुना संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें सिर्फ।

0: पे जाए ए साला जी साला है नदिया से बाहर पा डूब न जान समुद्र जा सकता गिड़ी कुल नी
1: अंत न सुखी कहना अंत न करना देना अंत न देखना।

भरपूर है कृपा तारी पर पूरी लोच हमारी। गॉड ब्लेसेस अस एंड माय विल्स आर ऑल फुलफिल्ड। बड़े खुशी भरे मौके से आके धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन दरबार दाजरियां भर के बख्शा लै रही परम सत्कार जो सत्संग जीओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। थोड़े मिनटों में आप आनंद कार्य रसम शुरू करने वाले ने जिस काका रौनक बिरदी सपुत्र सरदार उज्जल सिंह बिरदी बीबी हरप्रीत कौर बिरदी उन्होंने आनंद कार्य हो रहे हैं जी। बच्ची रिया गोविया डॉटर ऑफ सपुत्री मिस्टर रॉबर्ट गोविया बीबी वॉलेट गोविया के नाल। सो सारा प्रोग्राम जो है वो मैं आप जी की आज्ञा न इंग्लिश चलाना आपां पंजाबी जानने तो पता ही सारा कुछ। सो मैनू इस करके आग्ञा बख्शनी ताकि मैं उस दे मुताबक प्रोग्राम कर सकां। जिहड़े नॉन पंजाबी स्पीकर ने उन्हां नू पता लगे की हो रहा।

बच्ची बच्चा महाराज जी दी हजूरी हजूरी अंदर पूरन गुरु मर्यादा अनुसार पति ते पत्नी चार लावां मर्यादा अनुसार बन गए हैं। दोवें परिवारां नूं लख लख लख लख वधाइयां। वधाइयां दा शब्द गाया जाएगा। सारी संगतां इस सुभागी जोड़ी नूं असीस देना। सचे पातशाह सदाई माता पिता जी दा सत्कार सम्मान और गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नाल जुड़े रहन। जिंदगी दी सारियां तरक्कियां इन्हां बच्चियां दी झोली विच आए। लख लख वधाइयां सारयां नूं।

निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाय अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे फिराए अशांत मलेच मल पाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कह क्या मारे न जावा के जो तुझ पावे सही परिकार सदा सदा मत संत नाम संत नाम राम राम संत दो संत

प्रकाश विश्वित तरती थावती कर्म कर्मी कर्मी वे विचार सोहन मन प्रवान नगरी कर्म सोवे कच्छ पाई उठ पाए नानक गया कर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का

निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वत्या कमाए संत पापी पाप असंत मूड़े आर करे सुधाए संत मलेच माल पाक खाए असंत निंदक करे पाप नानक नीच कहे निचा मारे न जाना जो तुम पावे सही फलिका।

ब्रह्मा सत्स्वान्तरम् कमल सुमेला भगत कमल कमल क्षेत्र कमला कमल सरस्वती माँ

निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक होशी।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़ यार करे बुराए अशांत मलेच मार पाप खाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कहे मिटा मारे न जाना के जो तू पावे सही फल का तू।

आकाश तिस विच धरती थाप थी धर्म था तिस विच करमी करमी होए विचार है सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सोवें कच्छ पाई उत पाए नानक गया कर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का किते पौन पानी वह संतर किते काम रे किते परमे का

निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब जब आद सच जुगाद सच है भी सच।

अंत मूर्ख अंत घोर अशंत चोर राम अशंत अमर कर जाए अशंत गड़बड़ संत पापी पाप अशंत मूर्या करे संत मलेच मल पाए अशंत निंदक।

तत्पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुरु प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नाम

अंत मूर्ख अंत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाए संत पापी पाप असंत मूर्या करे संत मलेश मल पाए असंत।

निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक होशी सत सुचै सो

संत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत काल वड हत्या कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आर करे फिर संत मलेच मार पाक खाए असंत निंदक करे पा नानक नीच कहे विचार मारे अमर

अशांत मूर्ख अंत घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गलवड हृदय कमाए शांत पापी पाप अशांत कूड़े आश्रय रहे शांत मलेच मल पाक खाए अशांत निंदक करें पा नानक नीच कहें क्या मारे न जाना एक

0: अंगणत नहीं पीछा इत अब सुबह मैसा इत लुकरमा इत मूर्त खाही इत अंगूठ शर्मा इत
1: पार्टी के लिए।